प्रेम से बोलिए सी अयोध्यापति राम चंद्र की जय उमापति महादेव की जय. माय डियर डिवोटीज, टुनाइट इन हियर एज वी हैव जर्नी टू द गोल्डन पेजेस ऑफ रामचरितमानस, एज वी ऑल क्लास्प आवर हैंड्स टुगेदर, वी क्लोज आवर आइज, वी बो हेड्स इन प्रेयर, एज वी मेडिटेट ऑन द डिवाइन फॉर्म ऑफ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, सीकिंग हिज ग्रेस, हिज मर्सीज एंड हिज ब्लेसिंग्स.

अच्छा लगता है एहसास ख्यालों का कभी अच्छा लगता है। ऐ दिल तू मुझको बता ऐसी क्या बात है, ऐसी क्या बात।

अपने हिस्से के सारे अरमान दे दूं। इतना पागल हूं मैं तुम्हारे लिए, तुम मांगो दिल तो मैं जान दे दूं। एक का

ताम श्रीशैलस्थलवासिनीं भगवतीं श्रीमातरं भावये ॐ श्री दुर्गा लक्ष्मी सरस्वतीभ्यो नमः।

महिमा तुम्हारी है निराली. ग्रेटेस्ट योर ग्लोरी ओ देवी. सेव अस प्रोटेक्ट अस. मैं आपको बारंबार नमस्कार है देवी. सेव अस ओ देवी. या देवी सर्वभूतेषु दया रूपेण संस्थिता.

लूटे की हरो हनुमान महाप्रभु, जो कछु संकत हो यह मारो, कौन असु संकत मोर करीब को, प्रभु जोत बसे नहीं जात है तारो, हे महावीर करो कल्याण, करो कल्याण, करो कल्याण।